क्या आप जानते हैं एक राष्ट्र एक मानक के बारे में, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के लिए एक एकीकृत मानक प्रणाली लागू करना है। जिसकी मुख्य बात हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में देश में एक ही तरह के उत्पादों या सेवाओं के लिए अलग अलग मानक एजेंसियां और नियम है। इस मिशन का उद्देश्य इन सभी अलग अलग मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत समेकित यानी कि एक करना है। एक राष्ट्र एक मानक, वन नेशन वन स्टैंडर्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध हैं।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। श्रीमती मुर्मू का कल राष्ट्रीय सरस मेले के उद्घाटन का कार्यक्रम है। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन में भाग लेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधन करते हुए डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायल को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को इंदौर में खेले गए 3रे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यावोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्नोल्ड मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में अब फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, केरलम और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बिजली गिरने के साथ बारिश की आशंका है। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है।

0: And at 7 p.m. IST. India lead the five-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in third T20 international in Indore last Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का डीजल वैश्विक बाजारों में जारी करने का बचाव किया, कहा समझौते का उद्देश्य ईंधन की ऊंची कीमतों पर नियंत्रण करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध है।
2: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंक सहित हर तरह की आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की है।
3: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व दर्पण के लिए वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली

0: और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कल डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। विश्व दर्पण के लिए विकास नापा।
0: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के क्वाड समूह के अधिकारियों ने साइबर खतरों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मजबूती बढ़ाने और देशों के अपनी विकास राह चुनने की क्षमता मजबूत करने पर भी बल दिया गया। ये चर्चा सिंगापुर में क्वाड देशों के वरिष्ठ साइबर अधिकारियों की बैठक में हुई। चारों देशों ने क्षेत्र में साइबर क्षमता मजबूत करने और साइबर खतरों से बचाव के लिए सहयोग पर विचार विमर्श किया। उन्होंने साइबर क्षेत्र में आपसी सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत में मदद करने की इच्छा व्यक्त की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने संघर्ष के राजनीतिक समाधान का आग्रह किया है। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूबियो भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करेंगे। रूबियो की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। उन्होंने नई दिल्ली में मई में हुई क्वाड बैठक में हिस्सा लिया था। भारत आने से पहले रूबियो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली C5+1 मंत्री स्तरीय बैठक में उपस्थित होंगे। इसमें राजनयिक मंच पर रणनीतिक सहयोग कर अमरीका और मध्य एशियाई देशों के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य पर ध्यान दिया जाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का डीजल वैश्विक बाजारों में जारी करने के समझौते का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य ईंधन की ऊंची कीमतों पर नियंत्रण करना है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अगले वर्ष 7 अप्रैल तक रूस से डीजल की खेप पर लगे प्रतिबंधों में छूट देने वाला अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब पर हमलों को लेकर यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस मामले में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की मदद ले सकते हैं। हालांकि श्री ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में कोई पुष्टि नहीं की। उन्होंने ईरान को विफल देश बताते हुए कहा कि अमरीका शीघ्र ही अपना अगला कदम तय करेगा। ये टिप्पणी सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद आई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कल रोकी गई 2 क्रूज मिसाइलों के मलबे से 4 व्यक्ति घायल हुए और 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए $1,20,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि बड़े बैंकों को भी कानून का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पूरी अमरीकी वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ अमरीका ने ईरान, रूस, मादक पदार्थों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में $1,16,00,000 का जुर्माना भरने पर भी सहमति व्यक्त की है। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके प्रभाव से 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों तक फैल चुका

0: का है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि संक्रमण के वास्तविक मामले कहीं अधिक हो सकते हैं। ये प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैला है और इसका अभी तक कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला जर्मनी की येवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का डीजल वैश्विक बाजारों में जारी करने का बचाव किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address Brihattar Bharat International Conference in New Delhi today through video message. BIMSTEC nations strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. External Affairs Minister S. Jaishankar says India-US trade talks are heading in right direction and a deal is being ironed out. US President Donald Trump defends deal to release Russian diesel into global markets, says it is intended to ease high fuel prices. US Secretary of State Marco Rubio to visit India next week to strengthen energy cooperation and strategic partnership. And in cricket, fourth T20 international between India and West Indies to be played in Hyderabad this evening. Prime Minister Narendra Modi will address Brihattar Bharat International Conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today through video message. More in this report.
2: The three-day conference will bring together delegates, ambassadors and scholars from 50 nations to deliberate on India's historical and contemporary cultural connections with the wider world. Participants from countries including China, Japan, Mongolia, Nepal and Iran, among others, will contribute to discussions on shared cultural heritage and civilizational exchanges. The conference marks the centenary of the Greater India Society, also known as Brihattar Bharat Parishad, established in Kolkata on 14 October 1920. By a generation of Indian scholars with Gurudev Rabindranath Tagore as its spiritual guide. An exhibition titled Common Cultural Heritage of Asia will be organized during the conference. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: The first BIMSTEC Home Ministers meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. More from our correspondent.
3: In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent, combat and eliminate terrorism and violent extremism conducive to terrorism in a comprehensive and sustained manner in accordance with the UN Charter and international law. They also reaffirmed commitment to strengthening regional cooperation under BIMSTEC for realizing a connected, secure, resilient, developed and prosperous BIMSTEC region. They also expressed deepest condolences and solidarity with the victim of terrorist attack in member states and their families and with the governments of the affected states. The Delhi Declaration also called for effective implementation of the finalized plans of action in areas of human trafficking, narcotic drugs and precursor chemicals and anti-money laundering, as well as finalization of the plan of action by the subgroup on cooperation in countering

0: बाइक में नॉथिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
5: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
5: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दल

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे यादों का मेला तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो मेल आप हमें भेजते हैं एफएम गोल्ड eirdaily@gmail.com पे अपनी चॉइसेस के साथ, अपनी बातों के साथ, वो जरूर हमारे पास हाजिर हो जाता है। तो व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त हमारे साथ वैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र हैं, बोधिराज खोरवाल हैं, शमशुर कमराही हैं, दिल का मेल बॉक्स में अनिल मोहन भी हैं, सलीम अख्तर हैं, और उसके बाद बहुत सारे मेल एक जैसे हमारे पास बुधिराज जी के हैं, मस्कीन दादा हैं, और सब लोगों की जो चॉइस है उनमें से एक की चॉइस ये वाली है, बहुत ही प्यारी सी है, आपकी पसंद हमारी पसंद, और कई बार हमारी पसंद आपकी पसंद बन जाती है ना। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे।

लेकिन हम समझते हैं और आप समझते हैं दिल का मेल बॉक्स में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति, गांव नथाना से पंजाब से है ये हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मतलब ये इनके नाम है या फिल्म का नाम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लग रहा है इनके नाम है। और कहते हैं कि भाई देखिए अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए और कहना ये चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सबके दिल में प्यार भरा रहे और कुछ नहीं चाहिए। प्रोग्राम में हमारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये नाम है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश और निवृत्ति क्षीर सागर का। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। इसके साथ बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन है, वीना डब्बू, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना, आप सब शामिल हैं दिल का मेल बॉक्स में जो इस वक्त है सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। इसी तरह से आप हमें अपनी चॉइस क्यों पसंद है, कोई तो गाना ऐसा होगा ना जो दिल के पास होगा, जिसके साथ कोई कहानी होगी, कोई बात होगी, सिर्फ आपका नाम और आपके शहर का नाम, पर उसके बाद कई बार लगता है कि कुछ और होना चाहिए, तब वो गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। जैसे कि आपके लिए बना ये वाला गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल, जो आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं ना, सच्ची में कह रही हूँ, काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं कई बार हमको। थैंक यू वेरी मच।

अगर मैं कहूं कि दूर तक निगाह में है आपके मेल जो आप हमें करते हैं दिल का मेल बॉक्स में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे, ये हैं जिन्होंने कहा है कि जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, और कहते हैं भाई खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मुझे मालूम है कि खुशी इतनी कॉस्टली चीज़ है और इतनी नायाब चीज़ है कि सच में इसकी जो इम्पोर्टेंस है थोड़े समय बाद ही समझ में आती है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार, जिनके नाम आपको भी याद हो गए होंगे, मुझे तो याद हो गए हैं, निगत परवीन है, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान है, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबना, आलिया अंसारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमें सुनते हैं मुस्कुरा

कुछ ऐसी हालत हमारी तब होती है जब हम आपके बड़े सारे मैसेजेस एक ही इंसान के देखते हैं, यकीन मानिए, लेकिन अच्छा लगता है। आप इसी तरह से हमें मैसेजेस करते रहिए, अपनी चॉइस बताते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दिल का मेल बॉक्स है ना आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ. जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। देश में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि

0: वैश्विक औसत 78% है। सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और के श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will address Brihattar Bharat International Conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today through video message. The three-day conference will bring together delegates, ambassadors and scholars from 50 nations to deliberate on India's historical and contemporary cultural connections with the wider world. Participants from countries including China, Japan, Mongolia, Nepal and Iran, among others, will contribute to discussions on shared cultural heritage and civilizational exchanges. The conference marks the centenary of the Greater India Society, also known as Brihattar Bharat Parishad, established in Kolkata on 14th October 1926 by a generation of Indian scholars with Gurudev Rabindranath Tagore as its spiritual guide. An exhibition titled Common Cultural Heritage of Asia will also be organized during the conference. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that India and ASEAN share a clear interest in a peaceful, stable and open Indo-Pacific region. Addressing the ASEAN-India Defence Think Tank Forum in New Delhi this morning, Mr. Singh said that ASEAN is central to India's Indo-Pacific vision and that India's Act East policy is a long-term commitment to working with Southeast Asia as an equal partner. Outlining practical steps for the forum, Mr. Singh proposed developing a joint India-ASEAN research agenda focused on maritime security, disaster response, cyber threats and emerging technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stressed that peace and stability along the border are key to maintaining normal relations between India and China. Speaking at Bloomberg New Economy Forum in New Delhi yesterday, he said that the relationship will have consequences if peace and tranquility in the border areas is disturbed. In Bihar, at least 13 people died when a boat capsized in the Raghopur Diyara area of Vaishali district last night. Vaishali District Magistrate Varsha Singh told media persons that 13 people died while 6 were rescued after the boat capsized in the Ganga River in Raghopur. Most of the deceased are minors who were travelling on the boat to attend a feast. Around 15 to 20 people were on board the boat. 7 others have been referred to another hospital for better treatment. Prime Minister Narendra Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees to the next of kin of each deceased and 50,000 rupees to each injured. Chief Minister Samrat Chaudhary condoled the loss of life in the incident and announced an ex gratia of 4 lakh rupees to the kin of each deceased.

कई बार क्या होता है कि हम कुछ सपना देखते हैं और जो हम सपना देखते हैं वो हमारी सच्चाई के साथ बिल्कुल मैच कर जाता है, तब हम कहते हैं भाई वाह क्या तस्वीर है ये। तो तस्वीर में आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे केरल की धरती का एक प्यारा सा किनारा जिसका नाम है वर्कला। वर्कला जब आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि कहीं ये आपका वो वाला सपना तो नहीं, नीला नीला समंदर, लहरों का तराना। दिल यही कहता है कि भाई वर्कला में आज पूरा दिन है बिताना। तो फिर तैयार हो जाइए, बैग पैक कर लीजिए, एक यात्रा केरल में वर्कला की चलते हैं हम, क्योंकि यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वो हमें बड़े सारे ऐसे विश्वास देती हैं जिसको हम पहले से बना के रखते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और कुछ नए विश्वास बनाते हैं, और इस तरह से यात्रा पे यात्रा, यात्रा पे यात्रा हमें एक स्ट्रांग पर्सन बनाती है। 11:11 हो चुके हैं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में आपका स्वागत है तस्वीर में।

मालूम है आपको, जितनी बार आप घूमने जाएं उतनी बार आप थैंक्स करें, थैंक्स करें समय का, थैंक्स करें जो भी आपके साथ जा रहा है, और धन्यवाद करना तो बनता है उस जगह का भी जहां पे आप गए और लौट के आप वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीर चल रही है वरकला की, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक बहुत ही प्यारा सा जो सागर के किनारे छोटी सी बीच डेस्टिनेशन है, और ये तिरुवनंतपुरम से लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से आपको बड़े आराम से जा सकते हैं। और वरकला की बड़ी सारी खासियत हैं, जैसे कि वहाँ की जो लाल चट्टाने हैं, वरकला केरल की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ अरब सागर के ठीक किनारे ऊँची लाल लेटराइट चट्टानें मिलती हैं, और इसको राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई एक चीज़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाह वरकला, यह वरकला। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर कैफे और वहाँ की जो वाइब है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। समुद्र के किनारे बनी चट्टानों के ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर कैफे हैं, वहाँ बैठिए, एहसास कीजिए, और उसके बाद गुनगुना सकते हैं तो फिर गुनगुनाइए, नहीं तो फिर आप वहाँ भी हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है तस्वीर वरकला की।

लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि घूमने से प्यार कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको घूमने से प्यार है तो समझ जाइए कि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन आपके पास है। लेकिन फिलहाल मैं आपको वर्कला की जो एक तस्वीर है उसकी डिटेलिंग में और बताऊं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि घूमने का सबसे अच्छा समय यही वाला है, यही, यस, अक्टूबर से फरवरी।

बीच का जो समय है वर्कला के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो दिसंबर में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी और बरसात में मतलब जाइए, एडवेंचर होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ अपने जाके देखिए तो सही कि वो पूरा का पूरा माहौल कैसा है। वर्कला बड़ी प्यारी सी जगह है, धार्मिक महत्व है इसका। यहाँ पे 2000 साल पुराना प्रसिद्ध जनार्दन स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और साथ ही श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ भी है, और इसके साथ साथ साथ है। और अगर वो साथ किसी भी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो वहाँ पहुँच के सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस।

ये बात उतनी ही 100% सच है। हम यही कहेंगे जब नाराजगी में ट्रैवलिंग करते हुए वर्कला पहुंचेंगे तो यही कहेंगे चलो भी जो हुआ जाने दो और अब हम एंजॉय करेंगे वर्कला में। तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि वेल कनेक्टेड है। आप आराम से जाइए वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन, तिरुवनंतपुरम और भारत के जितने भी प्रमुख स्थान हैं उनके साथ वहाँ पे आपको नियमित ट्रेनों की जो आवाजाही है लगी रहती है। और प्राइवेट और केरला राज्य सड़क परिवहन निगम की जो रेलवे स्टेशन बस डिपो के पास ही है वहाँ पे बस भी आपको मिल जाएगी। और आप अगर लेना चाहते हैं तो रेंट पे आपको स्कूटर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी।

मतलब कि चॉइसेस अपार हैं। आप वर्कला जाइए और जाकर के ना एकदम अपने हाथ एकदम हवा में फैला करके अपने चेहरे पे उन ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस कीजिए और उसके बाद धन्यवाद कीजिए तस्वीर का कि हमने इतनी प्यारी तस्वीर आपको दिखाई वर्कला की।

ये यस, ऊंची ऊंची चट्टाने, नीचे सागर की रवानी, ठंडी हवाओं में घुली एक मीठी सी कहानी। सूरज जब ढलता है, सूरज जब उगता है, आसमान रंग भरता है और साथ में रंग भरती हैं हमारी बहुत सारी तमन्नाएं। और नारियल के पेड़ों की छांव में रेत पर जब हम चलते हैं तो लहरों की मीठी आवाज हमें आवाज देती है और उसके बाद लगता है कि सब कुछ सिर्फ थम गया है।

0: प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
7: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
3: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
7: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आपको पता है कि भारत में बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी सी जगह हैं जो हमारा स्वागत करना चाहती हैं। आप जाइए, घूमिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है तस्वीर, और तस्वीर है आज वर्कला की। तो वर्कला में आप जाएं और वहां पे एडावा नादियारा झील जरूर देखिएगा। वर्कला शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे, बल्कि उसे कम ही है। मतलब आप जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये शांत नदमुख अरब सागर में मिलने से पहले घने नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ आता है, और झील के ऊपर के पुल से जब आप दूर आसमान में देखेंगे ना, तब आप यही गुनगुनाएंगे कि शायद सच में जिंदगी गाती है। वैसे भी पानी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके आगे और आप अगर देखना चाहते हैं तो एंजेंगो किला देखिए, ये वर्कला के बहुत पास है और इसका ऐतिहासिक महत्व ही है, और साथ साथ बहुत सुंदर है, वेरी नेचुरल। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी चीज़ देखें उसकी बस कोई ना कोई खासियत हो, कई बार कुछ सिंपल सी चीज़ें भी हमारे दिलो दिमाग पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर करती हैं, और दिल से हमारे यही निकलता है कि भाई सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, और हमारा ब्यूटीफुल आपका ब्यूटीफुल हो सकता है और किसी का ब्यूटीफुल नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे जब हैं जैसे हैं उसे इंजॉय कीजिए।

0: ब्यूटीफुल तो पूरा वर्कला ही लगेगा, उसके आसपास भी सब कुछ अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने देखा वर्कला सुरंग तो भी अच्छी लगेगी। मोथथुरम द्वीप, वो देखिए आप, एक खूबसूरत जगह है जहां क्रूज नाव की के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। और ये जो छोटा सा द्वीप है, इस पे शिव पार्वती का मंदिर है। उसके बाद और जाइए शिवगिरी मठ देखिए। शिवगिरी मठ जो है एक बहुत वहां का प्रसिद्ध आश्रम है। सरकारा देवी मंदिर जाइए और उसके बाद वर्कला की जो वादियां हैं पूरी की पूरी वर्कला की, वो बहुत ही चार्मिंग हैं, बहुत प्यारी हैं। अगर आप बड़े आराम से बैठें और सागर की लहरों को यूं ही देखते रहें, दिल की आवाज़ सुनिए, आपके साथ जो है उससे बातें कीजिए, अपना जो आपको अच्छा लगता है वो ड्रिंक आपके पास हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, आय हाय, और उसके बाद सिर्फ गुनगुनाना बचता है और कुछ नहीं। ये तस्वीर है वर्कला की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।
1: दिल से मिलो।

0: कीजिए।
1: और वो होगा जरूर। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि देखिए वर्कला जाएं तो क्या खाएं, आए हाय वहाँ पे क्या नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। केरला कुजीन बहुत ही प्यारा, सब कुछ आपको इतना अच्छा फ्रेश फ्रेश लगेगा, तो उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे किस्म के नारियल मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे फिश फ्राई मिलेगी, पराठा मिलेगा, और उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर पुट्टू और कडाला करी आप इसको भी खा के देखिए। अपमस टू है, केरल सदिया है, इसके साथ साथ स्नैक्स और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जैसे कि बजमपुरी है, ताज़ा नारियल पानी और फ्रूट जूस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। कुल मिला के ये इतना अच्छा पैकेज है ना कि आपको बस आप यही कहेंगे कि वर्कला के बारे में हमने आपको पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर जब वर्कला से आप निकलें तो उसे थैंक्स करते हुए निकलें। अपना जो भी कूड़ा करकट हो उसकी जिम्मेदारी आप उसे खुद लीजिए, और उसके बाद धन्यवाद करते हुए यही कहिए कि भाई तेरी फिजा में कुछ तो बात है। वर्कला की लहरों में दिल की हर सौगात है, तू सिर्फ एक जगह नहीं है, एहसासों का किनारा है, केरल की जन्नत में तू सबसे प्यारा नज़ारा है। और फिर कुछ जगहें बहुत अच्छी लगती हैं हमारी आंखों को, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिल में बस जाती हैं, वर्कला उन्हीं में से एक है। ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पे, और तस्वीर के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। घूमिए जितना मन करे घूमिए।

बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, घूमते रहिए और एक्सपोजर अपने आप को यात्राओं का देते रहिए. और क्या चाहिए, उसके बाद लगेगा कि सबसे प्यारी है ये यात्राएं हमारी. और अब समय है समाचारों का.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को

0: 당근.
1: स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। एक बार फिर आज के सफर में हूँ आपके साथ, तो स्वीकार है मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज के सुविचार से दोस्तों, कि चमकती दमकती हर चीज हमें आकर्षित कर सकती है, लेकिन साधारण से सुंदर कुछ भी नहीं। और सादगी ही श्रेष्ठता है, साधारण ही सरल और सुंदर है, इसलिए साधारण होना कमी नहीं बल्कि खूबी है। तो एफएम गोल्ड सुनने की इस अच्छी और सरल आदत को आप बरकरार रखें हमारे साथ, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का ये सफर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर, और साथ ही हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथियों, शक्ति पर्व यानी नवरात्रि का चौथा दिन है आज, और इस दिन सुंदर अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा देवी को हम पूजते हैं। माना जाता है माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद सरल मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की और अपनी आठ भुजाओं से समस्त सृष्टि की सारी शक्तियां उसमें समाहित कर ली। माँ के इस चौथे कुष्मांड स्वरूप के पूजन से रोग शोक और दरिद्रता दूर होती है और आयु यश और आरोग्य बढ़ता है। तो चलिए नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना हम सुनते हैं।
2: नमस्कार, नवरात्र के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना। आज हम देवी भगवती के पावन रूप माँ कुष्मांडा के बारे में जानेंगे।

नवरात्रि के इस चतुर्थ दिन में भगवती देवी दुर्गा की हम आराधना करते हैं और दुर्गा का यह जो चतुर्थ रूप है हम इसे कूष्मांडा नाम से जानते हैं। कूष्मांडेति चतुर्थकम्, इस प्रकार की हमें पंक्ति उपलब्ध होती है। अब कूष्मांडा शब्द को लेकर के पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कूष्मांडा क्यों? क्योंकि अगर सामान्य जीवन में कूष्मांडा शब्द का अर्थ हम ग्रहण करें तो यह एक प्रकार का यह फल है, कह सकते हैं।

लेकिन जब देवी के साथ इस कूष्मांडा शब्द का प्रयोग है, उनके इस स्वरूप को ही कूष्मांडा नाम दिया गया है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है इसके अर्थ को जाने। कूष्मांडा में जो कु है, अगर आप देखें तो इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा है, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप है कु, जो जैसे कुत्सित शब्द है, कुमार्ग वाला जो कु है, ये कु है। और उसके साथ जो शब्द है वह है ऊष्मा, तो कु और ऊष्मा मिलकर के बना कूष्मा, और उसके बाद शब्द है अंड या अंडा, तो इसीलिए यह बना कूष्मांडा। तो इस प्रकार से इसमें तीन शब्द हुए, कु, ऊष्मा और अंडा। अब इस आधार पर अगर इसका अर्थ ग्रहण करें तो इसी अर्थ में देवी के उस शक्ति स्वरूप को हम पाते हैं। कु का मतलब होता है बुरा, दुख देने वाला, नेगेटिविटी से युक्त। तो उस कु ऊष्मा, यानी जिसे हम त्रिविध ताप कहते हैं, हमारे तीन प्रकार के जो दुख हैं जिनकी चर्चा हम आप सभी करते रहते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, वो हो गया कूष्मा। अब उस कूष्मा में अंड है, तो इस तरह से पूरा अर्थ बनेगा कि कुत्सितः कूष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः स अंडे। अंड, अंड का मतलब यहां पर उदर है। अगर इसको उदर यानी पेट, उसको और व्याख्या करें तो मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्याह सा कूष्मांडा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित हैं, ये भगवती कूष्मांडा कहलाती है। तो इस रूप में हम आप जाने कि हमारे सारे दुखों को भगवती दुर्गा अपने उदर में समाविष्ट किए हुए हैं, अर्थात अपने पुत्रों, अपने भक्तों के समस्त दुखों को वो अपने में समाहित की हुई हैं, इसलिए वह कूष्मांडा कहलाती हैं। अन्यत्र इसका हम एक और रूप पाते हैं, याज्ञवल्क्य, आप लोगों ने नाम सुना है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कूष्मांडा जो है इसको एक लता कहा गया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी शुरू में की, लता यानी जो भी बातें की, पीठा या कुंभर, इसकी चर्चा की। इनके फलों की बलि देने से हमारे पाप दूर होते हैं, अर्थात कूष्मांडा फल की बलि देने से हमारे पाप दूर होते हैं। इसके अंतर्गत हम तीन दिनों का उपवास करते हैं, तो इनसे पहले जो भगवती दुर्गा के जो तीन रूप हैं, जो तीन दिनों तक जो हमने उपवास किया, तो चौथे दिन आकर के, तीन दिनों के उपवास के बाद, अर्थात तो शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा, इन तीनों रात्रि के, तीनों दिन के उपवास करने के बाद कूष्मांडा के जो फल हैं उनके साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठ करके, कहते हैं उपवास करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। और वह जो उद्धरण है वह इस प्रकार है कि त्रिरात्रो पोषितो भूत्वा कूष्मांडी भीर घृतम शुचि सुरापह स्वर्ण हारी च रुद्र जापी जले स्थितः। तो जल में स्थित होकर के हम आराधना करते हैं। हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारे विश्वास के प्रदर्शन के कई रूप हैं। हम अपने अपने रुचि और सुविधा के अनुसार उस माता के प्रति समर्पित होते हैं, फल की बलि से या फल के चढ़ावे से हम अपनी देवी को प्रसन्न करते हैं, तो उनका संबंध उस कूष्मांडा से हम प्राप्त करते हैं। कूष्मांडा देवी दुर्गा का चतुर्थ रूप है। जिस प्रकार देवी दुर्गा हम सब लोगों में कण कण में व्याप्त हैं, हम सब लोगों को शक्ति देने वाली हैं, शक्ति प्रदायिनी है, वह दुर्गा इस चतुर्थ दिवस के अवसर पर कूष्मांडा रूप में हम सब लोगों को सदैव अनुकूल फल दें, अनुकूल हमें हमारी अभिलाषा की पूर्ति करें, हमारी मनोवांछा, हमारी कामना को पूर्ति करें। इसी शुभकामना के साथ हम इस कूष्मांडा देवी की आराधना करते हैं। मेरे, हमारे और आप सबके अंध तमस में यह देवी का चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा विराजित रहें, यही आज की इस नवरात्रि की हमारी शुभकामना है।

0: अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ कुष्मांडा के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।
1: अभी आप सुन रहे थे नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा और प्रस्तुतकर्ता थी रश्मि कुकरेती। और दोस्तों अब आपको बताते हैं आज का सवाल। आज आपको बताना है एक वर्ष में मुख्य रूप से कितनी बार नवरात्रि आती हैं। सोचिए और लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर। और इसी के साथ आपको एक और खूबसूरत सी बात हमारे इन दिनों चल रहे शक्ति पर्व से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको आज दर्शन कराऊंगी एक ऐसे शक्तिपीठ की जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है, और वो है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित। मंदिरों और तालाबों की ये नगरी बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर है, जहां 11वीं सदी में कलचुरी राजा रत्नदेव ने अपनी राजधानी बसाई और मां महामाया का भव्य मंदिर बनाया। मान्यता है यहां माता सती का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए ये कौमारी शक्तिपीठ कहलाता है। मां महामाया को कोसलेश्वरी देवी भी यहां कहते हैं। नागर शैली में यहाँ का जो मंदिर है वो बना हुआ है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का संगम यहाँ है। यहाँ गर्भगृह में एक ही पत्थर पर दो रूप हैं, सामने महिषासुर मर्दिनी और पीछे माँ सरस्वती, और ये रूप अन्यत्र कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। कहते हैं चारों युगों से अस्तित्व वाली इस नगरी को पहले मणिपुर, मानिकपुर, हीरापुर कहा गया और रत्नों के भंडार से ये रतनपुर भी कहलाई। बिलासपुर से

इस किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस स्थान में सड़क मार्ग के द्वारा बस टैक्सी से आप पहुंच सकते हैं और रेल मार्ग से नजदीकी स्टेशन बिलासपुर जंक्शन है, जहां से टैक्सी बस के द्वारा आप आसानी से इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यहां आए तो मां के दर्शन के बाद काल भैरव, 9वीं सदी का कंठी देवल मंदिर, पंचमुखी शिव मंदिर, राम टेकरी और बूढ़ा महादेव जरूर देखें। और इन दिनों नवरात्र में यहां आने पर लाखों ज्योति कलश जगमगाते हुए जीवन को जगमग करते हुए दिख जाते हैं।

दोस्तों, हमने आपसे आज का सवाल पूछा है कि आपको बताना है कि एक साल के भीतर कितनी बार नवरात्रि आती है। और देखिए, इस संदर्भ में हमारे पास संदेश हैं हमारे कुछ साथियों के, जिसमें नवीन भाटिया जी ने लिखकर भेजा है मोतीनगर नई दिल्ली से कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है। और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है, इद्रीश सैफी जी हैं, और इन्होंने लिखा है कि 2 बार आती है नवरात्रि, एक चैत्र में और दूसरी शारदीय नवरात्रि। जी, बहुत शुक्रिया आपके उत्तर की, हमें और प्रतीक्षा है। चरणदास जी भी हैं और उन्होंने भी लिखा है कि नवरात्रि 2 बार आती है साल में। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि नमस्ते जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इन्होंने जो उत्तर लिखा है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसके पहले हम आज के दिन विशेष की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज है 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस। और जानते हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम जिन सुविधाओं और उत्पादों का प्रयोग करते हैं ना, उन सभी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का मानक यानी स्टैंडर्ड बाजार में आने से पहले तय हो जाता है। और मानक यानी भरोसा, एक जैसा सारी दुनिया में, एक जैसी गुणवत्ता का प्रसार, ताकि सुरक्षित जीवन, भ्रष्टाचार से बचाव, समय और पैसे की बचत, साथ ही दुनिया में पहचान और व्यापार की ताकत बढ़े। ISI, ISO के निशान, ये वही मानक हैं दोस्तों, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारी जिंदगी में जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं या जो सामग्री है वो सुरक्षित है। तो अगली बार जब आप कोई सामान खरीदें ना, तो उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता को जरूर जांचें, क्योंकि जागरूकता ही असली मानक है।

गुमनाम इस फिल्म से आप मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। दोस्तों, त्योहारों के मौसम में ऊर्जा की खपत और बचत के प्रति जागरूकता हमारी खुशियों को दोगुना कर सकती है, तब जब बिजली के बिल की हमें बिल्कुल भी चिंता ना हो। और कैसे होगा ये सब? तो उत्तर है उद्यम को बढ़ावा देने वाली और कारोबार की नई पहल बनने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपकी जो खाली छत है अब वो हर महीने मुफ्त बिजली दे सकती है आपको। इस योजना से अब तक करोड़ों परिवार जुड़ चुके हैं। सरकार की भारी सब्सिडी और आसान प्रक्रिया से बिजली बिल शून्य हो रहा है लोगों का, जिन्होंने इसे लगाया है, और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं वो लोग, यानी बिजली के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी पा रहे हैं। लक्ष्य है सरकार का 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का। इसकी सब्सिडी में 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा पर 78,000 रुपए तक आप पा सकते हैं। लोन लेकर भी आप इसे लगवा सकते हैं। ईएमआई के बाद भी सालाना लगभग 15,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। बस आप भारतीय नागरिक हो, छत सोलर के लिए आपकी जो हो वो उपयुक्त हो, वैध आपका बिजली का कनेक्शन हो और पहले किसी सोलर सब्सिडी का आपने लाभ ना लिया हो, बस ये स्थितियां हो तो आप इस स्थिति में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ सकते हैं। दस्तावेज के लिए आपका आधार, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण और बिजली बिल की आवश्यकता होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप www.pmsuryaghar.gov.in पे जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी भर सकते हैं।

0: अंधारा
1: नहीं
0: दीवाना,
1: दीवाना नहीं अंजाना।
2: लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे अनजाना फिल्म से ये गीत। और साथियों, हमने आपको अपनी कार्यक्रम के शुरुआत में जो आज का सवाल बताया था उसके लिए बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं। और अगर आपने अभी अपना रेडियो ट्यून किया है तो fmgold@gmail.com पर हमारे प्रश्न का उत्तर आप भी दे सकते हैं। और हमारा आज का प्रश्न है कि आपको बताना है साल में नवरात्रि कितनी बार आती हैं। देखिए, हमारे पास हमारे जो साथी हैं जिसमें उमेश कुमार जी हैं जो हमें लिखकर भेजे हुए हैं अपना उत्तर, और उन्होंने कहा है जो बिल्कुल सही उत्तर लिखा है कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं और उनको ये बात पता है और कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हाँ साथियों, नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 वो जिन्हें हम मनाते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। और जो 2 गुप्त नवरात्रे होती हैं वो माघ के माह में और आषाढ़ के महीने में आती हैं। और हमारे पास उत्तर लिख भेजा है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से, और इन्होंने भी लिखा है कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। लेकिन अब आपको उत्तर पता चल गया होगा कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं। तो दोस्तों, किसी की एक बात मुझे याद आ रही है, अपनी बात आगे कहने से

पहले कि वो लाख तुझ में कमियां निकाले, तू मुस्कुरा कर टाल दे, हर बात को अपनी पेशानी पे मत सवाल दे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के कई फॉर्मूले हैं, उनमें से एक है अपना अंदाज, बाकी सब नजरअंदाज। तो दोस्तों, खूबसूरत से जिंदगी में रोजमर्रा के काम, भागदौड़ और उलझने तो आती ही रहती हैं, लेकिन हम अपनी सुंदर जिंदगी को खूबसूरती दे सकते हैं अंदाज और नजरअंदाज से। और किसी की बात है कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने का पहला तरीका ही है अंदाज। इसलिए काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि काबिलियत का अंदाज बनाकर आगे बढ़ें। और इसीलिए तो जीने का अंदाज बदलने से जीवन त्योहार बन जाता है, और नजरअंदाज करने से हमारी ऊर्जा बचती है। भाई, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी है क्या? नहीं ना, मुस्कुराकर नजरअंदाज करने में भी तो समझदारी है। और हर बहस में जीतना बिल्कुल जरूरी नहीं, कभी कभी सुकून के लिए हार जाना या छोड़ देना भी एक हुनर है।

दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, सच है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब ललक हो तो उम्र मायने नहीं रखती। हमारे आसपास ही कई ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने नया कौशल सीखकर उद्यम स्थापित किया और अपनी असाधारण क्षमताओं का परिचय दिया। जैसे डिजिटल वॉलेट से कैशलेस क्रांति लाने वाले उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षक रहे विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने करोड़ों रेहड़ी पटरी वालों का जीवन ही बदल दिया। मणिपुर की पारंपरिक हस्तशिल्पी मार्गरेट राम थारसियम, पारंपरिक खेती से निकलकर फ्लोरिकल्चर में कौशल अपनाने वाले मणिपुर के कृषि उद्यमी चोखोनी क्रिचेना, और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन सीखकर सफल उद्यमी बनी ओडिशा की सुजाता भुयान, और मध्य प्रदेश की मशरूम उत्पादक सुमा उइका। इन सभी के बारे में हम आपको अपने कार्यक्रम में बताते ही रहते हैं, और इनके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके बारे में बात की है और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। तो इनकी नया सीखने की जो चाहत है, उन्होंने ही इसे उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। इसलिए नया स्वीकारिए, नया सीखिए, क्योंकि नया सीखने की जो ललक है वही कठिन को सरल बनाती है।

जमीर। इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आपने इस गीत को सुना। और साथियों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने मुश्किलों के आगे झुकने से इनकार किया है तब तब वो मिसाल बना है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभावों में जन्म लेकर भी सफलता की कसौटी को पाया है। फिर चाहे बंजर जमीन को हरा भरा करने वाले हमारे किसान हों या अभावों के बीच भी देश का नाम रोशन करने वाले प्रेरक लोग हों। तो आज राजस्थान की एक ऐसी कहानी जहां बाड़मेर के सूखे खेत हरियाली से इतरा रहे हैं प्रगतिशील किसान पन्ना राम चौधरी के परिश्रम और उद्यम से, उनकी सराहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में की है। और रेगिस्तान के सूखे और बंजर खेतों में जहां पारंपरिक खेती ही हो पाती थी, वहां पन्ना राम चौधरी और उनके साथी किसानों ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित होकर न सिर्फ जैविक खेती की बल्कि खुद की किसान उत्पादक कंपनी भी बना डाली। रेगिस्तान में उगने वाले पौष्टिक बाजरे को नई पहचान देने वाले पन्ना राम बाड़मेर के बाजरे के लड्डू, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बाजरे के आटे, शुद्ध घी, गुड़, काजू और किशमिश से बनते हैं, उन्हें तैयार करने में ग्रामीण महिलाओं का भी सहयोग लेते हैं और इस तरह उन्हें भी आत्मनिर्भरता दे रहे हैं। तो कठिनाइयों से कसौटी की इस यात्रा में विपरीत जो परिस्थिति है उसमें भी लड़ने की जिद ही कसौटी बनती है आगे हमारे जीतने के लिए, क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं कसौटी से गुजरने पर ही मिलती है।

साथियों, चलते चलते हम आपसे बस यही कहेंगे कि आपको भी नहीं रुकना है, नहीं थकना है और सफलता के आयाम पर आगे बढ़ते रहना है हमारे साथ एफएम गोल्ड में। तो ये अंतिम गीत काला पत्थर फिल्म से आप सुन रहे थे और इसी के साथ आप अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ है रजनी। आज बात करेंगे हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार के बारे में, जिनके बारे में उनके दोस्त और जाने माने लेखक मंटो ने लिखा था कि उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जब भी वो बाहर निकलते तो भीड़ उन्हें घेर लेती, ट्रैफिक रुक जाता और उनके प्रशंसकों को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आपको बता दें कि आज के शो की शख्सियत हैं महान अभिनेता अशोक कुमार।

महल फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर जिले में एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ कुमुदलाल गांगुली का। उनके पिता कुंजीलाल

एक जाने माने वकील थे, इसलिए अशोक कुमार भी बचपन से ही वकील बनना चाहते थे। लेकिन पहली बार वकालत की परीक्षा में असफल होने के बाद उन्हें लगा कि शायद ये उनका रास्ता नहीं है। इसके बाद नौकरी की तलाश में वो मुंबई आ गए। उनकी बहन सती देवी के पति और मशहूर निर्देशक शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज से जुड़े थे। उनके कहने पर अशोक कुमार को वहां लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। ये बात है 1936 की, जब बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु मलिक जीवन नैया फिल्म बना रहे थे। तभी खबर आई कि जीवन नैया के हीरो नजमुल हसन फिल्म छोड़कर चले गए हैं। बस तभी हिमांशु मलिक ने फैसला कर लिया कि उनकी फिल्म के हीरो अशोक कुमार होंगे। फिल्म के निर्देशक फ्रेंस ऑस्टिन हालांकि उनके फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि अशोक कुमार का चेहरा मोहरा हीरो के लिए फिट नहीं है, लेकिन हिमांशु मलिक अपने फैसले पर अडिग थे। इस तरह अशोक कुमार बिना किसी प्लानिंग के फिल्मों में आ गए। अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आवाज है आशा भोंसले की।

अशोक कुमार की पहली ही फिल्म जीवन नैया लोगों को बहुत पसंद आई। जीवन नैया में हिमांशु मलिक ने उन्हें नाम दिया अशोक कुमार। हालांकि एक इंटरव्यू में अशोक कुमार ने बताया था कि उन्हें बचपन में अशोक के नाम से बुलाया जाता था। 1936 में उनकी एक और फिल्म आई अछूत कन्या, ये फिल्म भी बहुत सफल हुई। इसके बाद कंगन, बंधन और झूला जैसी फिल्मों ने सिल्वर जुबली की हैट्रिक बनाई, लेकिन उन्हें सुपरस्टारडम मिला 1943 में। 90 के दशक में हम देखें तो ऐसी कई फिल्में आईं जिनमें कि जो मुख्य नायक था वही एंटी हीरो था, यानी वही फिल्म में हीरो भी था और वही एक तरीके से कह लीजिए कि खलनायक भी था। इन फिल्मों को काफी हाइप भी मिली, लेकिन सच तो यह है कि एंटी हीरो की भूमिका सबसे पहले अशोक कुमार ने निभाई थी। यह फिल्म थी किस्मत। यह फिल्म उस समय 1 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में यह फिल्म 184 हफ्ते लगातार चली थी और इस फिल्म का रिकॉर्ड आज भी कोई फिल्म इस थिएटर में नहीं तोड़ पाई। तो इसी फिल्म से यानी किस्मत से अगला गीत आवाजें हैं अमीर बाई कर्नाट की और अरुण कुमार की।

0: हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म महल रातों रात सनसनी बन गई। अगले साल उनकी दो और सुपरहिट फिल्में आई, संग्राम और समाधि। इसके बाद अफसाना, दीदार, परिणीता, हावड़ा ब्रिज, धूल का फूल जैसी सफल फिल्में आई। लेकिन इनके बीच चलती का नाम गाड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अशोक कुमार ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को परिचित कराया।
1: बाजू

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
1: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
3: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
4: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
5: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
5: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और अमीर भाई कर्नाटकी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म समाधि से। और आज हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार की। 60 के दशक में अशोक कुमार ने कई तरह की भूमिकाएं की। बीआर चोपड़ा की फिल्म कानून और विजय आनंद की जासूसी थ्रिलर ज्यूल थीफ में खलनायक की भूमिका निभाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। गुमराह, ममता, आरती, बंदनी, राखी, मेरे महबूब, चित्रलेखा, भीगी रात और ऊंचे लोग जैसी फिल्मों में उन्होंने सहनायक या चरित्र भूमिका निभाई। 1968 में आई आशीर्वाद हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक त्यागमयी पिता के रूप में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अशोक कुमार एक सहज अभिनेता के साथ एक प्रतिभाशाली गायक भी थे। करियर के शुरुआत में उन्होंने अछूत कन्या और झूला जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी। आशीर्वाद में भी उन्होंने दो गीत गाए, एक थी नीना की नानी की नाव और दूसरा था रेलगाड़ी, जिसे भारत का पहला रॉक रैप सॉन्ग माना जाता है।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ।

0: भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक।

रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल पटलिपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलिपट्टनम उंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

70 और 80 के दशक में अशोक कुमार चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें सत्यकाम, शराफत, नया जमाना, अधिकार, पाकीजा, अनुराग, विक्टोरिया नंबर 203, मालिक, छोटी सी बात, आनंद आश्रम, खूबसूरत, तवायफ, मिस्टर इंडिया, खट्टा मीठा और शौकीन विशेष उल्लेखनीय हैं। 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। इस बीच दूरदर्शन के पहले टीवी सीरियल हम लोग में वो सूत्रधार के रूप में दिखाई दिए। ये सीरियल लोगों के दिल के कितना करीब था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शो के दौरान अशोक कुमार को लगभग 4 लाख खत मिले और हर एपिसोड में नियमित 4 मिलियन से ज्यादा दर्शक इसे देखा करते थे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं शौकीन फिल्म का किशोर कुमार का गाया गीत, जो कि अशोक कुमार पर फिल्माया गया था।

10 दिसंबर 2001 को 90 बरस की उम्र में अशोक कुमार का निधन हो गया। अशोक कुमार वो शुरुआती अभिनेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में स्वाभाविक अभिनय की नींव डाली। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने महल और परिणीता जैसी फिल्मों का निर्माण किया। पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1988 में अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बंदनी फिल्म के इस गीत के साथ अशोक कुमार पे चर्चा को आज विराम देते हैं। हालांकि इतना कुछ है कहने के लिए उनके बारे में कि एक शो में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की और आज का अंतिम गीत

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 14 तारीख है और दिन है बुधवार। आकाशवाणी तवांग से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रम को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे सोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्र के सहायक श्री अश्युत बर्मन और श्री तानिंग थको, मोनपो उद्घोषक है श्री थुपतेन टशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे हामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।

0: आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
0: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 ट्रिलियन थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 ट्रिलियन की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य 115 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
3: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।

0: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
1: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
4: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच

0: हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेशे हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे गुलशन कुमार से चंद हिंदी देवगीत। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

धन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी, जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गुलशन कुमार से चंद हिंदी देवगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे भूपेन हजारिका से चंद असमिया गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजारिका से चंद असमिया गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र तेंजिन छोकी से स्कूल जीवन के अनुभव को अपने शब्दों में साझा करते हुए सुनेंगे।
1: नमस्कार एवं ताशी दिलेक आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात शीर्षक के अंतर्गत मैं तेंजिन छोकी जेएनवी तावांग कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी बातचीत का शीर्षक है स्कूल जीवन के अनुभव। स्कूल वह पहला मंच है जहाँ अक्षरों के साथ साथ सपनों को उड़ान मिलती है। स्कूल का जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार समय होता है। यही वह समय होता है जब हम न केवल पढ़ना लिखना सीखते हैं, बल्कि अनुशासन, संस्कार, दोस्ती और आत्मविश्वास भी यहीं से सीखते हैं। जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो माँ की उंगली थामे डरते डरते कक्षा में प्रवेश करते हैं। आंखों में डर, मन में अनजान सी घबराहट होती है, लेकिन वही स्कूल धीरे धीरे हमारा दूसरा घर बन जाता है। वही कक्षा, वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही घंटी सब हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। हर सुबह स्कूल की घंटी और प्रार्थना सभा हमारे दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करती है। प्रार्थना के शब्द हमें देश, समाज और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। कक्षा में बैठकर कभी गणित के प्रश्न कठिन लगते हैं तो कभी हिंदी की कहानियां मन को छू जाती है। विज्ञान की प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग

0: सीखने को बेहतर बनाते हैं। परीक्षाओं का डर और परिणाम की उत्सुकता स्कूल जीवन का अहम अनुभव होता है। स्कूल जीवन की सबसे सुंदर यादें हमारे दोस्तों से जुड़ी होती है, वे दोस्त जिनके साथ हमने टिफिन बांटा, होमवर्क कॉपी किया, कभी शरारत भी की। हमारे शिक्षक कभी सख्त तो कभी अत्यंत स्नेही होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हमें सही मार्ग दिखाना होता है। उनकी दी हुई सीख आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। मेरे स्कूल ने मुझे ऐसे अवसर भी दिए हैं जो हर विद्यार्थी को नहीं मिलते। अपने स्कूल के माध्यम से मुझे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सुअवसर मिला। एक छात्र के रूप में मैं यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। इससे मुझे यह विश्वास होता है कि अगर हम विद्यालयी जीवन में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़े तो बड़े से बड़ा सपना भी साकार हो सकता है। स्कूल में होने वाले भाषण, वाद विवाद, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे अपने प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है और मेरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक छात्र के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि स्कूल जीवन के अनुभव मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनाता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे स्कूल की विद्यार्थी हूँ जो शिक्षा के साथ साथ अवसर और संस्कार भी देता है। कक्षा की उन बेंचों पर सपने आज भी पलते हैं, शिक्षकों के शब्दों में भविष्य के दीपक आज भी जलते हैं। स्कूल ने जो हौसला दिया वही हमारी पहचान बनती है। यहीं से चलकर हर विद्यार्थी इतिहास रचते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विद्यालयी जीवन की यादें अनमोल होती है, इनका सम्मान करें, अपने शिक्षकों का आदर करें और अपने मित्रों के साथ बिताए हर पल को सजो कर रखें, क्योंकि जब जीवन की दौड़ में हम थक जाते हैं तो यही स्कूल की यादें हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: श्रोताओं, अब पेश है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनते हैं सिमरन फिल्म से गुरु रंधवा और जॉनिता गांधी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है वायु ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

अगला गीत सुनते हैं जगदे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में। इस गीत को लिखा है जयदीप सहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोता आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने समुद्र सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में स्टार्टअप और निवेश के अनुकूल माहौल को और मजबूत बनाने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के कई पानी और जिले के जोराम गांव स्थित पोतुंग में पहली बार पक्षियों की गणना का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तवांग उपायुक्त नांग्याल आंगमो ने आज बिजली से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित चौथे मुख्यमंत्री युवा शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के अनिन स्थित भारत तिब्बत सीमित पुलिस बल ITBP के शिविर का दौरा किया। भारत की योग मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसिया देशों के बीच

0: सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध तकनीकी साझेदारी और समुद्र सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसिया भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों का साथ आना होगा। उन्होंने कहा है कि भारत और आसिया सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित है और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसिया का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा है कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी होती है। उन्होंने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास्त्र, सशस्त्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने इन चर्चाओं का जारी रखने के लिए संवादों को बढ़ावा देने की भी बात कही है। श्री सिंह ने आसिया देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतर्राष्ट्रीय आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि मध्य शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने के लिए क्रियान्वयन में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्य शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले देशों से है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ. जयशंकर ने कहा है कि धमकियों में माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मूल्यों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान बदलाव को और अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कोहोर्ट 4 के स्नातक प्रतिभागियों के सम्मान और कोहोर्ट 5 के शुभारंभ करते हुए राज्य में स्टार्टअप और निवेश के अनुकूल माहौल को और मजबूत बनाने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी यानी ACE कार्यक्रम और विशेषज्ञों के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल यानी ITA की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने ITA को राज्य के लिए एक लघु नीति आयोग बताया है। इस दौरान राज्य के 7 उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्चुअल माध्यम से सैटेलाइट इंक्यूबेशन केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया और 5 अन्य संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री खांडू ने कहा है कि ACE कार्यक्रम के माध्यम से रचनात्मक विचार रखने वाले युवाओं को अपने विचारों को आर्थिक उद्यमियों में बदलने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। वह इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा, जो कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कई पांजोर जिले के जोराम गांव स्थित पुतुंग में पहली बार पक्षियों की गणना का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल का आयोजन कई पांजोर टूरिज्म सोसाइटी द्वारा अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब, बर्ड काउंट इंडिया और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थानीय जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जिले में पक्षी अवलोकन को सतत इको टूरिज्म यानी पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना था। 2 घंटे तक चले पक्षी गणना अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने जोराम गांव और उसके आसपास के पक्षियों की 38 प्रजातियों की पहचान कर उसका रिकॉर्ड तय किया। ये क्षेत्र में पक्षियों की समृद्ध विविधता और पारिस्थितिकी महत्व को दर्शाता है। इस पहल